0: FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
1: FM247365
0: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
1: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: at 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
1: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
2: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।

0: FM 100's time check. It's 8 a.m.
1: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
0: This program is brought to you by
2: Higher Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology Jisse Mile Maximum Cooling Aur Energy Saving No Frost No Worries
0: And
3: Phoenix Laga Aur Bhool Ja Phoenix Laga Aur Bhool Ja
0: And
4: Sweepy Clean Kare Tezi Se Sakht Daag Aur Jarasim Ka Khatma Aur Rakhe Toilet Ko Chamakta Hua Saaf
0: And HBL Freedom Account Jahan Khwab Wahan HBL And

0: 15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तना जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
0: This program is brought to you by
2: Higher Kanaya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving. No Frost, No Worries.
0: And
3: Phoenix लगा और भूल जा, Phoenix लगा और भूल जा.
0: And
4: Sweepy Clean, करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
0: And
5: HBL Freedom Account, जहां खाब, वहां HBL.

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा। तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अजमे इस्तेहकाम, मुस्तहकम पाकिस्तान।
1: मुफाद आमा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
4: हमने आप ना कुछ 3 बार मौत देखा।
5: टाइम से मनु ऐसे के मैं हूं, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
6: फिर उन्होंने साड़ी वीडियो बनाई, सानू मारिया, सब कुटिया।
3: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
7: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
3: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क्याम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी एहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकदसा की ज्यारत को जाने वाले जायरीन भी कानूनी जरा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने। हुकूमत पाकिस्तान।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: FM 100 like us on Facebook.com/FM247365 FM 247365।
9: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
10: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
9: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
11: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
12: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हम इससे क्या।
9: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ही कम नहीं।
11: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
12: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
11: अभी इसी वक्त
13: अपना BMI चेक करवाइए,
14: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
13: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
14: आइए वेट से आगे का सोचें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: It's 9:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबी सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबी सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
0: This program is brought to you by
2: Higher Kanaya, no frost IoT refrigerator, twin inverter technology, just simulate maximum cooling or energy saving. No frost, no worries.
0: And
3: Phoenix laga aur bhool ja, Phoenix laga aur bhool ja.
0: And
4: sweep be clean, kare tezi se sak daag aur jaraseem ka khatma, aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
0: And HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा। कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: 5 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja. तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल है। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज

0: काम की जाती हैं। इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं। ताहम बाज़ औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है जब बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता। याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है। याद रखें, पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता। अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं, सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं। ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा। अगर मुकर्रर वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं। शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा। इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राबता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें। अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना CNIC और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाएं। याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा। लॉग इन होने के बाद बाएं जानिब मौजूद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब शिकायत की तफसीलात दर्ज करें और शिकायत की नौयत मुंतखब करें। इसके बाद शहर, सर्विस, फराहम कुनंदा की किस्म और दीगर मतलूबा मालूमात फराहम करें। अगर आपकी शिकायत किसी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से मुतालिक है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास वो शिकायत नंबर मौजूद हो जो आपको ऑपरेटर के पास शिकायत दर्ज कराते वक्त फराहम किया गया था, क्योंकि पीटीए के पास शिकायत के अंदराज के लिए ये नंबर देना जरूरी होता है। अब कंप्लेंट नंबर दर्ज करें और कंप्लेंट समरी में अपनी शिकायत की तफसील लिखें। जरूरत के तहत मुतल्लिका फाइल भी मुंसलिक की जा सकती है। इसके बाद कवायद और जवाबित कबूल करते हुए अपनी शिकायत बाकायदा तौर पर सबमिट कर दें। शिकायत सबमिट होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मौसूल होगा, जिसके जरिए आप अपनी शिकायत का स्टेटस भी मालूम कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए पीटीए के टोल फ्री नंबर 0800-55055 पर राब्ता करें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।
1: ये मुफादे आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
2: FM 247 365

0: 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मुहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: FM 100's time check. It's 12 noon.
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।

0: 24-7-365. FM 24-7-365. FM 100. 31 साल FM 100. आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
1: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

0: All right, जी, so we are back और आप सब सुन रहे हैं प्रोग्राम कुकिंग स्पेशल विद मी फातिमा खान एंड वी हैव कुकिंग एक्सपर्ट रिदा आफ्ताब. गुफ्तगू का सिलसिला जारी है आप लोगों के साथ, आपकी रेसिपीज को भी शामिल कर रहे हैं, टिप्स को भी शामिल कर रहे हैं. और इस वक्त मैं ये अभी याद करी हूँ कि इस वक्त कौन कौन से फल मौजूद हैं. आम तो अब अख्ताम पजीर ही होने वाले हैं, मतलब अब आम के तो जाने का टाइम आ गया,
1: तकरीबन वो आम उजाले वाले हाँ शुरू हो गया.
0: हाँ अभी वो आ गए, सेब वो जो छोटे छोटे होते ना जूसी, वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं.
1: अच्छा,
0: वो अब आ गए हैं.
1: मुझे तो नाम भी नहीं आते इनके, आमों के ज्यादा नाम भी आते
0: नहीं. आम सेब छोटे वाले होते हैं,
1: सेब की बात हाँ, आम की करें,
0: आम तो जाने वाले हैं.
1: हाँ, सेब छोटे वाले सेब सही,
0: वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जूसी जूसी से. और अभी
1: वो येलो कलर के होते हैं ना, येलो वाले सही रहते हैं.
0: हाँ,
1: वाले
0: जूसी जूसी आपको हाँ. ज्यादा फुसफुसे सेब अच्छे लगते हैं?
1: नहीं नहीं, मुझे भी इस तरह से आम जूस वाले जो होते हैं ना वही वाले सेब अच्छे लगते हैं. वो जो फीके से अजीब से होते ना, ना उसमें से हाँ, रस निकलता हूँ ना खाने में.
0: वो मतलब मुझे लगता है उसे खाने के बाद मुझे तो डिप्रेशन
1: ये क्या हमने
0: क्या खा लिया हमने हाँ. तो ये है कि इस वक्त काफी अच्छे अच्छे फल मौजूद हैं और बड़ा अच्छा लगता है. मैं तो अच्छा, ये तो आजकल एक जामुन शॉर्ट्स बहुत चल रहे हैं कि जामुन की एक ड्रिंक बन रही है जिसमें नमक और ये डाल के
1: नमक. वो जामुन का तो ये ना बहुत तरह के ड्रिंक्स बनते हैं, हालांकि इसका कोई इतना ज्यादा वो है नहीं. वो ऊपर से उसको सारा इसकी स्किन उतारे, स्किन उतारने के बाद आप ब्लेंडर में डालें, थोड़ा सा काला नमक डल जाता है और फिर ग्लास को साइडों पे से जो लेमन और वो चिलीज वगैरह के साथ ऊपर से गार्निशिंग करके, तो वो इसका होता है. आइस वगैरह खूब डाल के थोड़े से मिंट स्लीव डाल दें, वो भी बड़ा मजे का लगता है.
0: मजे का लगता है. तो आजकल जामुन इस लिहाज से थोड़ा ट्रेंड कर रहे हैं कि जामुन शॉर्ट्स और जामुन की जो ड्रिंक्स हैं वो बन रही हैं. और इस वक्त हमारे पास जो जो फल मौजूद है, मैंने कहा चलो जो जो फल याद आ रहा है इधर से उसकी भी कोई ना कोई हम रेसिपी पूछ लेते हैं. आड़ू हैं, खुबानियां हैं, खुबानियां भी हैं.
1: हाँ, खुबानी तो बहुत बेहतरीन चीज है, मुझे तो खैर पसंद भी बहुत है. खासतौर पे उसके बीज निकाल के तोड़ के खाना,
0: बादाम निकलता है ना
1: वो उसके बड़े मजे लगते हैं. और पता है देखिए, ये हुंजा साइड पर वो लोग खुबानी का, इनकी जो एप्रिकॉट की वो जो जैम होती है, इनके जूस होते हैं, ये लोग कहते हैं बड़ा मतलब इनकी जो एज भी बहुत ज्यादा होती है, लंबी उम्र होती है. अच्छा, लंबी उम्र पाते हैं क्योंकि ये बड़ी फायदेमंद है. ये आपकी उम्र को ज्यादा मतलब आपको बूढ़ा नहीं होने देती है. इसका ऑयल मिलता है, वो भी बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन इसका ऑयल भी बड़ा अच्छा है. और इसके साथ इसका हम जब हम लोग जाते हैं ना वहां पे नॉर्दर्न एरिया, तो जब आप नॉर्दर्न एरिया जाते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा पहाड़ों पे जाना होता है बहुत ज्यादा. तो अक्सर ये होता है कि वो जब बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है ना, जब मैं तो काफी दफा गई ना, मुझे एक एक्सपीरियंस हो गया, तो फिर अपने पास ना वो ड्राई वाली एप्रिकॉट जरूर रखा करें, खुश्क वाली, वो वहां से मिलती है, होती भी बड़े मजे की. आपको याद है मैंने एक दफा खिलाई थी?
0: बहुत बहुत मजे की थी.
1: तो वो बड़ी फायदेमंद होती है. तो जैसे थोड़ा सा ये होता है ना कि जब चढ़ाई पे जाओ तो आपकी ऑक्सीजन थोड़ी कम होती है, आपका बीपी लो होने शुरू हो जाता है, तो वो लोग जरूर वहां से ले लिया करें और अपने पास रखा करें ड्राई वाली एप्रिकॉट. तो मैं भी लेकर आई थी वहां से, तो मुझे
0: वहां से लाई थी वो,
1: मैं वहीं से लेकर आई थी, वहां से लेकर आई थी.
0: वो बहुत मजे की थी. और उधर पता नहीं उसमें कुछ ना बड़ा मजे का मसाला है, उसे डाल के करा था, वो वाकई में बहुत ज्यादा टेस्टी है. और बल्कि मैं तो कहूंगी रहता, वो जो आपका एक हिडन रेसिपी है ना उसकी, वो बहुत अच्छी है.
1: चले वो मसला ही होता है ना, अभी बखैर यहाँ पे भी मिलती है. मेरे एक दो जानने वाले थे तो वो तो मुझे बेचारे कहते रहते हैं, जो जहां मेरी तो दोस्तियां हो जाती हैं, वो कहने लगे आप एड्रेस दे हम भिजवाते हैं. मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फिर वो इतनी दूर से बेचारे भिजवा रहे हैं, तो जाहिर है फिर उनका भी हमें ख्याल करना पड़ता है. लेकिन हम यहाँ से
0: दे दें एड्रेस.
1: अच्छा, अभी काफी लोग गए भी हैं घूमने, बहुत सारे लोग गए हुए यहाँ से
0: ना
1: एरिया काफी गए,
0: क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही है ना.
1: वहां पे एक जड़ी बूटी है जिसको कहते हैं तंबूरो.
0: अच्छा,
1: तंबूरो के नाम से एक जड़ी बूटी है, बिल्कुल जैसे धनिया टाइप का होता है. तो वो ड्राई में भी मिलती है, फ्रेश भी मिलती है, लेकिन वो जहां ग्लेशियर वगैरह होते हैं ना वहां पे वो लगती हैं. वो बड़ी फायदेमंद है, खुश वहां भी पैके. वो ब्लड प्रेशर को कम करती है, शुगर को कम करती है, उसके अलावा आपके वेट को बढ़ने देती है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती है. वो बड़ी जबरदस्त एक कैवा टाइप का है, उसको तंबूरो कहते हैं. तो मेरी एक वीडियो देखना, मेरे उस पर भी लगी हुई, तो वहां भी मैं एक बंदे से ले रही हूँ, तो थोड़ी सी मैंने वीडियो उस टाइम में बनाई थी मेरे जो यूट्यूब का वो है उसके ऊपर.
0: अच्छा,
1: हाँ वो बड़ी जबरदस्त चीज है. अगर कोई लोग अभी उधर है तो ये ड्राई वाली एप्रिकॉट और उसके साथ तंबूरो एक होता है, एक जड़ी बूटी, वो जरूर लेके आएगा.
0: ओके, तो ये हम आपकी आपके यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं.
1: हाँ, मेरी मैंने वैसे मैंने जब वहां से ली थी तो उससे बातें करी थी, तो उसने मुझे उसके फायदे बताए थे, फायदे उसके बता रहा था.
0: अच्छा, तो वो वहीं पे मिलती है, वो यहाँ नहीं मिलती?
1: वो पैकेट ड्राई लेकर कुछ कुछ जगहों पे मिलती होगी, मे भी, मुझे इतना भी पता नहीं कि वहां की चीजें, लेकिन वो ना वहां से ज्यादा मिलती है. मैं तो फ्रेश मैंने तोड़ के मुझे उस बंदे ने दी थी.
0: अच्छा, अरे वाह, नहीं भाई, फायदेमंद चीजों की बड़ी जरूरत है आजकल. और मैं कहती हूँ जितनी अवेयरनेस आप फैला सकते हैं, बता सकते हैं, लोगों को जरूर बताएं कि किस चीज के क्या फायदे हैं. क्योंकि दादा आजकल आप ये देखें कि बीमारियां बहुत हद तक बढ़ चुकी हैं, चीजें बड़ी जो है वो मिस मैनेज हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ बाहर का खाना, बाहर की चीजें, और हमारी फिजिकल एक्टिविटी आजकल बिल्कुल नहीं है. तो ये सारी चीजें ना हम बड़ा मुतासर कर रही हैं.
1: सही कह रही.
0: तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जो भी छोटी छोटी चीजें हैं आपकी जिंदगी में अच्छी तब्दीली ला सकती हैं, उसे जरूर शेयर करें ताकि लोगों के काम आए और लोग उसे अपनी डेली लाइफ रूटीन में जरूर ऐड करें. पहले हमारी जिंदगी बड़ी अच्छी हुआ करती थी, अगर स्कूल की अचानक से छुट्टी हो जाए, सुबह सुबह कार्टून देखना, एक मतलब एक एक्साइटमेंट हो गई थी कि छुट्टी हो गई तो बस अब वो हम कार्टून दे. अब के बच्चे और तब के में वाकई में बहुत ज्यादा एक नुमाया फर्क आ गया है, मोबाइल और रील.
1: तो फिर छोटे हो आप लोगों की उसमें, तो हमारा जो बचपन था ना, बड़ा प्यारा वाला बचपन था.
0: अच्छा,
1: हमने इतना अपने बचपन को एंजॉय किया. ठीक है, उस टाइम पे हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन हम लोग सारी जितनी भी होती थी ना कजन्स वगैरह, गली में हम लोग बर्फ पानी खेलते होते थे, छुपन छुपाई खेलते थे. वो एक होता था पेल्दी जिसको कहते थे, वो हम लोग खेलते होते थे. वो बॉल के साथ पिट्ठू गरम खेलते थे, पतंगबाजी हमने की, हम लोग अपनी इतना एंजॉय किया ना हमने. लेकिन आजकल के बच्चों में मोबाइल के अलावा
0: मोबाइल मतलब फुटबॉल है, क्रिकेट है, उन्हें पता ही नहीं है कि ये एक्चुअली में एग्जिस्टिंग गेम्स है, बस मोबाइल में ही खेल रहे हैं.
1: और देखिए माशाल्लाह अभी भी हम लोग कितने एक्टिव हैं,
0: अल्हम्दुलिल्लाह सही बात,
1: माशाल्लाह अभी तक हम लोग एक्टिव हैं क्योंकि हम लोगों ने बहुत मतलब भाग दौड़ खेल कूद हमने की है. और अभी के देखो ना, वो एक काम करके दूसरा काम नहीं करती है. अब माशाल्लाह अल्लाह ताला बस सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, नजर से जाए. मैं इतने काम करती हूँ ना, सब हैरान होते कि आप कैसे इतने काम करती हैं. तो वजह ये है कि हमने अपने आप को बिजी रखा हुआ है.
0: नहीं, एक्टिव लाइफस्टाइल इज अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ये बहुत एक जरूरी चीज है. और अगर हम इस कोट को अभी अचानक से मैंने बना लिया वैसे कोट बैठे बैठे लेके, एक्टिव लाइफस्टाइल इज अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ये हकीकत है कि भाई अगर आप एक्टिव रहेंगे तो आपकी जिंदगी बड़ी हेल्दी
1: बहुत अच्छी
0: है. क्योंकि जब हम सुस्त हो जाते हैं ना तो हम वाकई में सुस्त हो जाते हैं, फिर हम कुछ भी नहीं कर रहे होते. लेकिन ये जरूरी है आजकल.
1: अच्छा, मेरा क्या था, मैं भी आती हूँ ना जब मोबाइल पे, मेरा पहले मेरी ये आदत थी, मैं मोबाइल लेके आती ही ना मोबाइल लेके बैठती थी और फिर उसको देखते थे, हाय 5 बज गए, हाय 6 बज गए, ऐसे होता था. अब मैंने पता क्या सोचा, मैं जब घर में आती हूँ, मैंने आराम से मैंने चेंज किया, मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद अगर बहुत ज्यादा नींद आई हुई है तो थोड़ा रेस्ट कर लिया, उसके बाद मैं अपने कामों में लग जाती हूँ. मैं अपने काम पहले खत्म करती हूँ. मुझे पता अभी शाम का खाना बनाना है, गैस जानी, मैं ये चीजें रेडी कर, वो चीजें रेडी कर, सब कुछ अपना करके फिर जब मैं देखती हूँ ना, मैं फारिग हूँ, फिर मैं मोबाइल लेके बैठती हूँ. अगर एक दफा मोबाइल लेके बैठ जाओ ना पहले, तो आपके सारे काम रुक जाते हैं.
0: ये बात
1: है. आप उसको हाथ न, मैं खुद अपने आप को कहती नहीं, मैं भी हाथ नहीं लगाऊंगी, और हाथ लगाना तो फिर मैं इसमें लग जाऊंगी. मैंने कहा पहले सारे काम करो फिर मोबाइल लेके बैठो. तो ये बस आप
0: ये बात
1: रूटीन बना ली है. बहुत मोबाइल बहुत लंबा काम टाइम आपका वेस्ट
0: करता है. मोबाइल आपके वक्त को कैसे जाया करता है आपको खुद पता नहीं चलता, आप इसकी दुनिया में खो जाते हैं.
1: सही, बिल्कुल.
0: और वाकई में बड़े टाइम लगता रहता है इस दुनिया से बाहर आने में.
1: वो एक चीज हटती है, दूसरी चीज आती है, बस इसी में ही वो होता रहता है.
0: और AI बहुत स्ट्रांग है रदा. और मजे की बात आपको पता क्या है कि आप जो सोच रही होती है ना वैसे आपके सामने भी आ जाता है.
1: ये हकीकत है.
0: ये
1: अच्छा, मैं रेसिपीज का बारे में होती है ना कि मैंने अभी रेसिपीज का करना है, तो वही मेरे सामने सारी वही चीजें आती रहती. तो एक बंदे को आइडिया मिल जाता है, देख रहे होते हम लोग फूड को देख रहे होते हैं, जाहिर है हमारी फील्ड ही है, तो उसके बाद हाथ छोड़ने का दिल ही नहीं करता मोबाइल को.
0: ये बात तो है कि हम जो सोच रहे होते हैं वो भी हमारे सामने आ जाता है. अच्छा रहता, मोहम्मद जुनेद मैसेज करते हैं, कहते हैं आप ही मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, इसके लिए कोई टिप बताएं या कोई अच्छा शैम्पू बताएं जो बालों के लिए अच्छा हो.
1: देखिए, बाल गिरना खाली मतलब थोड़ा सा ये भी होता है बाज़ दफ़ा कि हमारी जो रूटीन की हमारी जो खुराक है, जो हमारा डाइट वो है, हम उस पर सही तरह से फोकस नहीं करते. ठीक है, ये भी वजह होती है, नींद पूरी नहीं होती ये भी वजह होती है, बहुत सारी फिर टेंशन होती है ये भी वजह होती है. ठीक है, ये सारी चीज़ों का. बादाम बड़ी अच्छी चीज़ है, 7 बादाम रात को आप भिगो दिया करें, सुबह उसको छील के खा लिया करें, आईसाइट के लिए बड़े अच्छे हैं, वैसे भी बालों के लिए भी बड़े अच्छे हैं. उसके अलावा आप कोशिश करा करें कि सरसों का तेल इस्तेमाल करें. ठीक है, जो अच्छा सरसों का तेल मिलता है ना, नारियल का होता है लेकिन नारियल जो होता है ना ज्यादातर बालों को वाइट भी कर देता है. सरसों अच्छी वाली आप वहां जाए एम्पेस मार्केट, वहां पे सामने वो निकाल के दे देते हैं ऑयल, तो वो ऑयल लें, उसके अंदर आपने थोड़ा सा एलोवेरा डालना है, 1-2 विटामिन ई की कैप्सूल डालने हैं, और वो अपने बालों पे लगा लिया करें. ठीक है, बालों पे लगाकर 2-3 घंटे बाद आप उसको बालों को वॉश कर लें, उससे आपके बालों में शाइनिंग भी आएगी और बाल जो है आपके घिरना भी बंद होंगे। ये आप एक रूटीन बनाए, कोशिश करें जिस तरह से चुकंदर बहुत अच्छा होता है, बालों के लिए भी बड़ा अच्छा होता है, उस सैलेड के तौर पे उसका भी खाएं। और पहले पता है हम लोग बेरी के पत्तों से भी सर धोते थे, मैं भी धोती थी उस बेरी के पत्तों से, वो भी बड़े फायदेमंद है। बेरी के जो पत्ते होते हैं, बेर के पत्ते होते हैं, वो उसको पानी में बॉयल करके उससे भी बाल धोना बहुत अच्छे होते हैं। मेहंदी के पत्ते बड़े अच्छे होते हैं, मेहंदी जो फ्रेश वाली मेहंदी होती है ना दरख्तों पे लगी, वो बड़ी अच्छी होती है। अगर वो उसको पानी से ग्राइंड करके सर पे लगाएं, फिर वॉश कर लें आधे घंटे बाद, तो बालों में बड़ी अच्छी शाइनिंग आती है। ये नेचुरल चीजें हैं।
0: नहीं, नेचुरल चीजें हैं बिल्कुल, आप इसको भी जरूर ट्राई करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल बाल बहुत गिर रहे हैं और लोगों का ये शिकवा रहता है कि भाई बाल क्यों गिर रहे हैं मेरे तो बिल्कुल आप इसके लिए स्टेप्स को फॉलो करें। अच्छा रीता, अभी आप बादाम का कह रही थी, ये बादाम को भिगो के खाना ज्यादा फायदेमंद रहता है या ऐसे ही आप खा लें?
1: नहीं, भिगो के खाना ज्यादा फायदेमंद है। बादाम जब भी खाएं उसको पानी में भिगो के रखें, रात भर करें, या 4-5 जब तक वो नरम हो जाए फिर उसको खाएं, वो फायदेमंद होता है। जो हम वैसे खाते हैं उसका कोई फायदा नहीं होता।
0: अच्छा, चलो, मैंने कहा ये एक बहुत, मैं क्योंकि मैंने हमेशा ज्यादा लोगों से सुना है, रदा भी अक्सर कह रही होती हैं और मैं कहती हूँ कौन, मतलब मैं हमेशा बादाम ऐसे ही रोज खाती हूँ सुबह।
1: अच्छा,
0: ये ज्यादा फायदेमंद है, मैंने कहा क्लियर करें।
1: अब मेरी बेटी ने ना एक रूटीन बनाई हुई है, वो माशाल्लाह वो डेली के अपने लिए 7 बादाम, मैंने उसको बोला जीरक 7 मेरे भी इसमें डाल दे, 14 हो जाए करें। तो अब ये कि तकरीबन 4-5 दिन से ना वो मेरे लिए भी बादाम उसमें डाल देता है, तो मैंने भी स्टार्ट किया, इसलिए कि मेरी आईसाइट बहुत ज्यादा वीक है। तो एक रेगुलर एक रूटीन बनाएंगे तो इंशाल्लाह। और अभी जब गाजरें फ्रेश वाली आएंगी ना, तो मैं वो जरूर बना के रखूंगी, जो मेरी सास मेरी अम्मी वगैरह बना के रखती थी गाजर का।
0: अच्छा,
1: वो तो 100% बहुत फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद है। हालांकि कुछ भी नहीं है, जैसे उन्होंने क्या किया

0: वेलकम बैक एवरीबॉडी। सो हम आ चुके हैं वापस और उसी के साथ साथ इत्तिलाक लिए अर्ज है कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है क्योंकि प्रोग्राम कुकिंग स्पेशल अपने अख्तामी मरहल के करीब आ चुका है, तो आप जल्दी से हमें मैसेज करें, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने और इधर से जो भी रेसिपी या टिप आपको पूछनी है उसे हम जरूर शामिल करेंगे। एफएम 100 के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर हम लाइव मौजूद हैं और उसी के साथ साथ हम जो है वो आपके मैसेजेस भी ले रहे हैं, तो अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखिए, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। हमारे पास मैसेज आया है, ऐसे हम शामिल कर लेते हैं, डबल डबल मैसेज हो चुके हैं। चलती है गाड़ी, उड़ती है धूल, मेरी फातिमा आप ही हैं गुलाब का फूल।
1: वाह भाई वाह, क्या जबरदस्त।
0: ये है रीमा, उनकी बेटी हूरिया, रोज हमें ऐसे मजे मजे के शेर बनाकर जो है वो भेजती हैं, बहुत शुक्रिया। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम फातिमा, आप ही आप बहुत प्यारी लग रही हैं, थैंक यू। ओ अच्छा, आपने देखा होगा, ओके ओके, थैंक यू सो वेरी मच। और आपके मैसेज को हमने शामिल कर लिया है, गॉड ब्लेस यू हूरिया। इसी के साथ साथ रिदा, वैसे हम रोज कौन से दिन मनाए जाते हैं ये आपके साथ भी शेयर कर रहे होते हैं, तो आज रिदा को ऐसा मजे का दिन नहीं मनाया जा रहा जो हम आपसे शेयर करें। ओहो वेरी सैड फीलिंग कर रही हूँ,
1: आज आप उदास हो जाएंगी।
0: आज मैं उदास हूँ कि आज कोई ऐसा खास दिन नहीं। मैडम मैं रिदा को भी जरूर बता रही होती हूँ कि आज ये दिन है। अच्छा कल अलबत्ता जो है वो आंटी डे मनाया जाएगा, आंटीज डे, यानी कि जो खालाएं वगैरह होती हैं उनका दिन। तो रिदा आपका अपनी खाला के साथ कैसा रिश्ता था?
1: खाला मेरी बेचारी सभी इंतकाल कर गई, कोई है ही नहीं, बची नहीं है।
0: हाँ लेकिन मुझे एक बचपन में होता है, जैसे खाला का मुझे लगता है कि बॉन्डिंग अम्मा से तो ज्यादा
1: होती है। जैसे हमारी ना आपस में, अब मैं मेरी जो भांजियां हैं उनके साथ तो हमारी बड़ी अच्छी है, मेरी तो कोई खाला भी रही नहीं है, लेकिन मेरी जो बहन
0: खाला बनी है,
1: मैं खाला बनी, हमारी तो बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, हम लोग बिल्कुल दोस्तों की तरह बिल्कुल। अभी जो हम लोग फार्म हाउस गए थे ना तो हम सारे एक बराबर, हालांकि मैं सबसे सीनियर थी हम सब एक बराबर लग रहे थे, तो मेरी तो बड़ी मतलब हम सब बहनों की आपस में अपनी भांजियों के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग,
0: बहुत अच्छी,
1: हम लोग दोस्तों की तरह बहुत अच्छे। अब मेरे ख्याल में मैंने देखा ऐसे चाचियों के साथ अच्छी सबकी अंडरस्टैंडिंग, पहले वाले जो रिश्ते होते थे ना वो खत्म हो गए, अब अच्छे रिश्ते।
0: वो पहले जमाने में ये भी होता था ना कि फुप्पुएं बेचारी बिला वजह में बर्फ,
1: हालांकि ऐसा नहीं होता ऐसा।
0: अब मैं रियलाइज करती हूँ जब से मैं, क्योंकि अब मैं खाला भी हूँ फुप्पो भी हूँ, तो अब जब मेरे बहन भाइयों की शादी हुई तो मैंने रियलाइज किया कि हम तो ऐसा कोई ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं करते हुए नजर आ रहा है। मेरी तो अभी एक ही भतीजी है, तो मतलब ऐसा तो कोई फुप्पो नहीं है, हम लोग जो फुप्पो को प्रेजेंट किया जा रहा होता था।
1: अब वो कभी बात होती है ना तो मैं अपने बेटे का जब बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ नहीं मेरे बेटे की जब शादी होगी ना तो मैं कभी भी उसको किसी चीज का नहीं बोलूंगी, उसका दिल करता है वो सोए, उसका दिल करता है घूमे, जो मर्जी करे, सारा कुछ ऐसा ही हो ना। तो सब कहते नहीं ऐसा क्यों कहते, मैं कहती हूँ मेरी को अगर ऐसा होगा तो मैं ये भी करूंगी ना, उसको अलग से एक अलग अपार्टमेंट लेके दे दूंगी ताकि मेरे बच्चे ना सुकून से अपनी जिंदगी गुजारे, जो हम लोगों ने तकलीफें
0: उठाई बात है।
1: और पहले तो होता था हर चीज का बड़ा यकीन करें, वो मेरा तो जो मैंने अपना जो वक्त काटा है ना, मैं वो चीजें सोचती हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि भी वो हमने कितना बुरा वक्त काटा।
0: नहीं अच्छी बात है रदा कि आप जैसे ऐसा नहीं सोचती, वरना बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि जो कुछ हमारे साथ हुआ ना वही बदला हम लेंगे आगे भी।
1: यकीन करें हमारे यहाँ का तो ऐसा माहौल था कि आप अपनी माँ के घर भी जा रहे हैं ना तो वो भी आप जेठ से अलग पूछेंगे, जिठानी से अलग पूछेंगे, और सास ससुर तो मेरे थे नहीं, नन से अलग पूछेंगे इस तरह से, और आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करते थे, तो मतलब ये सारी
0: सही बात है।
1: और मेरी तो जिठानी अल्लाह पाक उसको जन्नत फिरदौस में जगह दे, तो वो बड़ी थी तो वो हर चीज का उनके हैंड ओवर था।
0: सही बात है।
1: अब तो माशाल्लाह हम मैंने सब जगह देखे, बड़ी दोस्तों की तरह रहते अपनी बहुओं के साथ,
0: ऐसे
1: ही रहूंगी।
0: वो भाभियां भी अच्छे से रहती हैं, नंदे हैं भाभी, वरना एक ये है कि नंद और भाभी में बस लड़ाइयां हो रही हैं और ये हो रहा है, मतलब वाकई में मैं बिल्कुल सही रजा ने बात कही कि हमें वाकई में एक फेयर होता था कि जब ये शादियां होंगी या रिश्ते बनेंगे तो पता नहीं क्या होगा, लड़ाइयां ही होंगी। लेकिन हकीकत है कि अब इस दौर में जरा पॉजिटिविटी भी आ गई है कि लोग सबको उनका एक स्पेस देते हैं, एक टाइम देते हैं, अब ये बहुत जरूरी है, ये वक्त की रिक्वायरमेंट है। तो
1: देखिए बात सारी ये कि आपने लड़ झगड़ के भी रहना है, आपने मतलब प्यार मोहब्बत से भी रहना है, तो बेहतर है कि प्यार मोहब्बत से रहो, दोस्तों की तरह रहो, वो ज्यादा अच्छा है। जरा सी घर से कोई बात बाहर निकलती है ना, 10 लोगों को और बात करने का मौका मिलता है तो फिर वो लड़ाई और ज्यादा बढ़ जाती है, तो बेहतर है कि दोस्तों की तरह रहो तो ज्यादा अच्छा है। अब मेरी जो बाजी अल्लाह पाक उसको जन्नत नसीब करे, वो अपनी भोग से इतनी अच्छी थी कि कभी किसी चीज के इंटरफेयर ही नहीं करती थी, हर चीज अगर घर में, हालांकि इतने 10-12 नौकर होने के बाद खुद कोई उसकी भी फ्रेंड्स आती थी तो टेबल लगाना, खाने बनवाने नौकरों से सब कुछ करके करती थी, तो मैं देखती थी उनकी लाइफ बड़ी अच्छी है। इसी तरह फ्रेंड शमा है, वो भी इसी तरह से अपनी बहू के साथ बड़ी अच्छी है, तो मैंने भी सोचा, खैर वैसे तो मैं वैसे भी नहीं करती हूँ, तो मैंने सोचा भाई मैं ابھی بھی میں اپنے سارے کام کر رہی ہوں.
0: صحیح بات ہے.
1: جب وہ آئے گی تو تب بھی ہمیں خود ہی کر لینے چاہیے, کیوں ہم اس پہ کریں کہ بھائی
0: بالکل بالکل
1: اس نے کھانا پکانا ہے یا اس نے گھر سنبھالنا ہے, اس نے وہ کرنا ہے. جب ہم اپنی بیٹیوں کو نہیں بولتے تو دوسروں کی بیٹی کو کیوں بولیں؟
0: بالکل صحیح بات ہے, یہ بہت اچھی پوزیٹو سوچ ہے.
1: اچھی زندگی گزر جاتی ہے.
0: نہیں نہیں, یہ بہت اچھی بات ردا نے کہی اور یہ اچھی پازیٹو تھنکنگ اور سوچ ہے. ہم آج بڑی اچھی یہ بات ہوئی, ایک نیا موضوع نکلا, تو اس لیے کیونکہ چاہے وہ خالہ ہیں, چاہے وہ پھپھو ہیں, وہ ساس ہیں, وہ یہ سب ہیں, تو یہ رول جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ نیگیٹو رول ہی پلے کیا جائے. ہاں یہ میں کہتی ہوں کہ جیسے کہ اگر آپ کے بڑے آپ کے ساتھ اچھے ہیں تو یہ چھوٹوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ احترام کریں, عزت دیں, یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. لیکن خوشحالی سے رہیں, یہ
1: اچھے سے رہیں, دوستوں کی طرح رہیں, دوستوں کی طرح. اب میری بیٹی ہے نا, میری بیٹی کی بھی شادی ہوئی ہے, تو اس کی مطلب ماشاء اللہ چھ, وہ تین نندے ہیں اور ایک مطلب میرے بھائی ہوئے کی ہے. تو ہوتا ہے ہر گھر میں, تو ذرا سی کی بات ہے تو میں کہتی نہیں نہیں, یہ اس کی بیٹی کی کبھی بھی فیور نہیں کرتے. تو وہ پھر اس طرح سے ہوتا ہے نا, بچوں کا بھی دل, اگر ہم بچوں کی فیور تھوڑی کر لیتے نا, مطلب میں تو یہی کہتی ہوں کہ ماں کو ذرا سا تھوڑا سا نا اس چیز کے لیے اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ بچوں کی, بیٹیوں کی خاص طور پہ فیور نہ کریں, ان کو سمجھا دیا کریں. اور نہ ابھی دیکھو کئی جگہوں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ماں شادی, ماں اللہ نہ کرے,
0: صحیح بات
1: بھی ہوتا ہے اس طرح.
0: یہ دونوں طرف سے بیلنس از ویری
1: ہونا چاہیے.
0: خیر جی, آج کے پروگرام میں ہم نے کوکنگ کی بات تو کی, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اچھے پیغامات بھی دیے, اور ایسے مزہ آتا ہے تھوڑی چٹ چیٹ کرنے میں,
1: چینج ہونا چاہیے
0: کہ تھوڑے سے کھانے کی بات بھی ہو اور تھوڑی سی چٹ چیٹ بھی ہو, تو مزہ آتا ہے پروگرام میں. خیر جی, اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو پروگرام کا وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے. میں تو آپ کے ساتھ 2 بجے تک موجود ہوں, لیکن ردا آفتاب کے جانے کا وقت ہوا جاتا ہے.
1: چلیں جی, بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ان شاء اللہ تعالیٰ اب کمنگ فرائیڈے ملاقات ہوگی میری طرف سے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.
2: FM 100's time check. It's 1 PM. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
3: Assalamu alaikum, Pakistan.
4: آزان ظہر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں آزان ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwaber Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।

0: This program is brought to you by
1: Hire Kar Naya, no frost IoT refrigerator, twin inverter technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
3: FM 247365.
4: Yes, everybody. तो हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज, और अब जबकि बाकायदगी से आगाज हो ही चुका है तो बगैर देर किए भाई आप लोग भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं. अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, की एचआई लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे. तो भाई हाउ आर यू एवरीबॉडी, कैसी चल रही है आप लोगों की जिंदगानी? अच्छी, मजेदार, बोरिंग, एक्साइटेड या फिर सो? मतलब कभी कभी आपकी लाइफ में बड़ी एक्साइटमेंट होती है, कभी कभी आपकी लाइफ बड़ी बोरिंग चल रही होती है, और कभी कभी आपको एक छुट्टी के दिन का बड़ा बेसब्री से इंतजार हो रहा होता है, और कभी कभी वो दिन आता है और पलक झपक कर गुजर जाता है. तो क्या सूरत हाल चल रही है भाई आप लोगों की? थोड़ा बेहतर है कराची का मौसम कल के बनिस्बत, क्योंकि कल कराची में एक अदद सरप्राइज मिला है कराची वालों को, बारिश का हो जाना, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था. इसीलिए अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि अभी जो बारिश की पेशगोई थी ना, इसके जेर असर कल ऑलमोस्ट पूरे शहर में बारिश हो गई है. तो उसकी खबर ये थी कि जी ये सिर्फ सुपर हाईवे भेरिया टाउन की तरफ होने की पेशन गोई थी और उससे जुड़े चंद इलाकों में होनी थी, लेकिन द गुड थिंग इज दैट कि ये बारिश पूरे शहर में ही हो गई और हम खुश हो गए. तो ये एक अच्छी चीज हो गई कल. और मजे की बात यह है कि अब आगे की सूरत हाल के हवाले से भी हम आपको आगाही फराम करेंगे कि मौसम मजीद क्या कहता है. होगी जी, मौसम पर भी बात होगी. और इसी के साथ साथ हमारी लिस्नर आ चुकी है, कहती है अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं लवली आजी? वालेकुम अस्सलाम, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हो? कहती है आज लंच में सीख कबाब और पराठे हैं. ओ वाओ. कहती है प्लीज प्ले रहीम शाह सॉन्ग. ओके जी, ये और इनका रहीम शाह के सॉन्ग्स. चलो जी, जरूर हम शामिल करते हैं रहीम शाह का, तुम्हें कोई सॉन्ग सुनाते हैं और तुम्हारे भी मूड को तरोताजा करते हैं. भाई आज हमारे लिसनर्स का दिन है तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके पसंद के तमाम ट्रैक्स को हम सबसे पहले शामिल करें. जिस भी सिंगर को आप सुनना चाहते हैं, कोई अच्छा सा ट्रैक आपका मूड हो रहा है सुनने का, तो बिल्कुल आप हमें बताएं, हम जरूर इसे शामिल करेंगे. रहीम शाह के उन्होंने हमसे ट्रैक की रिक्वेस्ट की है तो हम इसी को करते हैं शामिल. और चन्ना इनका फेवरेट है तो चलो जी चन्ना ही इनको सुनाते हैं और आते हैं वापस ट्रैक के बाद.
5: You know,

ओके जी, तो रहीम शाह की आवाज के साथ हम आ चुके हैं वापस। अब रहीम शाह की आवाज के बाद आप सुनेंगे फातिमा खान की आवाज क्योंकि मैं वापस आ गई हूँ प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल में। लोकपाल की पसंद के ट्रैक को शामिल किया है। रीमा हमें मैसेज करती हैं, रिदा को सलाम कहती हैं और एक टिप पूछती हैं, बट द थिंग इज दैट रीमा के रिदा जो है ना वो हमारे साथ फ्राइडेज और सैटरडे को मौजूद होती हैं 12 से 1 के दरमियान, और रिदा आप जा चुकी हैं तो अब आपको सिर्फ फातिमा खान मिलेंगी, तो फातिमा खान से बात कर सकती हैं। रिदा का मैसेज ऐसा है कि आप फ्राइडे को या सैटरडे को करिएगा 12 से 1 के दरमियान, बिकॉज दिस इज द टाइम फॉर लंच टाइम स्पेशल। तो भाई क्या पक रहा है आप लोगों के लंच में? बिरयानी है, निहारी है, पुलाव है, कबाब है, सब्जी है, बन कबाब है, चाट है या कुछ और है? अच्छा आप लोग कहेंगे कि लंच में बन कबाब और चाट कौन खाता है फातिमा आपी? भाई मुझे तो बड़े पसंद है, मैं तो खा लेती हूँ। और अगर आपका लंच कहीं बाहर हो रहा है तो आई मस्ट से कि ये एक अच्छी प्रेफरेंस है कि आप अपने लंच में चाट खा लें, बन कबाब खा लें। लेकिन यार चाट का भी एक बड़ा मसला है जो आजकल कराची में मुझे बड़ा फेस करना पड़ रहा है कि आई कैन नॉट फाइंड अ गुड चाट एवरीवेयर। मतलब चाट की प्लेट जो है, महंगाई को तो मैं बिल्कुल समझ रही हूँ कि वो तो दिन ब दिन बढ़ रही है, जैसे कि दिन ब दिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है वैसे ही इसकी वजह से हर चीज महंगी हो रही है, लेकिन चाट में वो चाट वाला क्या कहीं खो रहा है? यार एक अच्छी चाट की प्रेफरेंस चाहिए मुझे कि कहाँ आपको लगता है कि बहुत आला दर्जे की चाट मिलती है, और इसकी तलाश काफी दिनों से जारी है। और लंच टाइम स्पेशल में खाने पीने की बात तो हम लाजमी करते हैं ना, तो बिल्कुल यही आप भी बताएं कि आपको चाट पसंद है या नहीं पसंद है, और अच्छी मजेदार सी लाइक फुल ऑफ फ्लेवर्स चाट आप लोग कहाँ कहाँ से खा रहे हैं तो हमें जरूर बताएं। और इसी के साथ साथ हमारे पास एक और मैसेज आया, कहते हैं सलाम आपी, वेलकम टू द शो, वी आर एंजॉयिंग इट अ लॉट। ऑल राइट जी, थैंक यू सो मच, एंजॉय करें आप, ये जानकर हमें भी हो रही है खुशी। और एंजॉय कर ही रहे हैं तो चलें जी एक अदर ट्रैक की जाने भी चलते हैं, हदीका क्यानी की आवाज आपको सुनाते हैं और फिर हम आते हैं वापस। ये भी ट्रैक हदीका क्यानी का मुझे बड़ा प्यारा लगता है। हदीका क्यानी के भी बहुत सारे प्यारे प्यारे से ट्रैक्स हैं, बट दिस वन इज माय करंट फेवरेट नाउडेज। ये बड़ा अच्छा ट्रैक है तो हम इसे शामिल करेंगे। आज सैटरडे है तो आज लिसनर स्पेशल होता है, लिसनर से होती है बातचीत, तो अगर आपको भी कोई ट्रैक सुनना है आपके पसंद का तो हमें जरूर मैसेज करें और बताएं, हम उसे जरूर शामिल करने की कोशिश करेंगे। Until and unless हम आपको हदीका क्यानी की आवाज सुनाते हैं, फिर वापस आके आपके मैसेजेस को करते हैं शामिल।

0: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
1: Join Fatima Khan.
0: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
1: Midday break a blast.
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।

ओके जी, सो रीमा की पसंद के ट्रैक को भी हम शामिल कर चुके हैं और आ गए हैं वापस। तो भाई आज लेसन्स का दिन है, तो आप ही लोगों से बहुत सारी बातों का सिलसिला हमारा जारी है। और हमें मैसेज करती है जरीनूर, कहती है मेरा मैसेज आप तक नहीं आया, रिदा के लिए भी किया था। जरीनूर आपका सिर्फ यही मैसेज मेरे पास आया जो भी आपने मैसेज किया है, इसके अलावा आपका कोई मैसेज हमारे पास मौसूल नहीं हुआ है। कराची का मौसम तो बिल्कुल फातिमा खान की तरह हसीन हो रहा है। अरे वाह भाई वाह, थैंक यू सो वेरी मच। ये किसने लिखा? आई थिंक रीमा ने लिखा होगा। बहुत शुक्रिया आपका रीमा इतनी तारीफ करने का। माय गॉड थैंक यू। मतलब रीमा तो भाई मुझे शो में मतलब एक अलग ही लेवल का प्रोटोकॉल देती हैं, सो थैंक यू रीमा फॉर दिस ब्यूटिफुल कॉमेंट। एंड आई होप एंड आई विश के यार कराची का मौसम ना ऐसे ही कॉन्स्टेंटली अच्छा रहे, क्योंकि इस वक्त ना एक अच्छे मौसम की बड़ी तलब है हमें, और अच्छा मौसम ना आपको बड़ा रिफ्रेश कर देता है। और अभी जो एकदम से गर्मी आ जाती है, और फिर मुझे तो सच्ची बात बता रही हूँ, गर्मी से ज्यादा ना जेलेसी होने लगती है, और जेलेसी मुझे सब पंजाब से हो रही है, क्योंकि वहां पे भाई बड़ी जबरदस्त किस्म की बारिशें हो रही हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं वहां। खैर गर्मी भी बहुत जबरदस्त ही पड़ती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहां ना ये बारिश होने से चीजें जरा बैलेंस हो जाती हैं। और मुझे बड़ी जेलेसी होती है जब मैं पंजाब की खबरें पढ़ी होती हूँ कि भाई वहां तो ऐसी धुआंधार बारिश और ये वो, और फिर मैं कहती हूँ कितने लकी हैं लोग। लेकिन भाई कराची का मौसम भी अभी की सूरत हाल में कहती हूँ बस अच्छा रहे, अबर आलूद रहे, तो हम इससे भी खुश हैं। इस दफा थोड़ी कम बारिश की ख्वाहिशात कर रही हूँ मैं, और वैसे इस दफा है भी कम, क्योंकि सड़कों का जो हाल है उसमें हम कहाँ जाएंगे। तो मैं कहती हूँ बी प्रैक्टिकल, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे आई लव बारिश सो मच,

0: जो एक पसंदीदा मौसम है वो यही है, तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल हम चलते हैं ब्रेक की जानेब, और इतना मौसम का जिक्र हो रहा है तो भाई एक अदर ट्रैक हम मौसम को भी करते हैं डेडिकेट, और आते हैं वापस ट्रैक के बाद।
1: This program is brought to you by
2: Hyrecan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले maximum cooling और energy saving. No frost, no worries.
3: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
4: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाए।
5: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
4: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हम इससे क्या।
5: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाइए,
3: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए, वेट से आगे का सोचें।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
1: Join Fatima Khan.
0: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's make your midday break a blast.
1: Midday break a blast.
2: जी तो वक्त कम है और मुकाबला सख्त है क्योंकि प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल अपने अख्तितामी मराहिल के करीब आ चुका है और एवरी डे ये बात कहते हुए मुझे अफसोस होता है कि यार वी हैव वेरी लेस टाइम और अब हम जाने वाले हैं और फिर अब हम आपसे इंशाल्लाह मंडे वाले दिन मिलेंगे यानी कि एक दिन का गैप आएगा और इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मंडे को मुलाकात होगी लेकिन अभी हम मौजूद हैं हमें मैसेज करती हैं कहती हैं थैंक यू फातिमा सॉन्ग लगाने के लिए कहती हैं और मैं नाम लिखना भूल जाती हूं पर आप पहचान जाती हैं मुझे रीमा हूं और ओके कहती हैं यू आर सो नाइस फातिमा आप सो स्वीट हो थैंक यू बिल्कुल हम पहचान जाते हैं अपने लिसनर्स को अब हमारे लिसनर्स जो हैं वो बिल्कुल हमारी फैमिली होते हैं तो हम इन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते और पहचानते हैं अच्छा भाई आज कोई ऐसा इंटरेस्टिंग से दिन नहीं बनाया जा रहा जिस पर मैं बात करूं और जब कोई अच्छा इंटरेस्टिंग से दिन नहीं बनाया जा रहा होता ना तो मैं बड़ी सैड भी हो जाती हूं क्योंकि कोई मजे का दिन नहीं है अच्छा कल के दिन कुछ दिन मनाए जा रहे हैं कल है नेशनल ट्री डे और ट्री की इस वक्त कराची में जरूरत है कोई ना कोई दिन हमारे शहर कराची से काफी लिंक कर रहा होता है और क्लाइमेटिक चेंज की वजह से ट्रीज आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर सोसाइटी इन आर सिटी तो ट्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कराची में जल्द अज जल्द जो है वो बहुत सारे दरख्त लग जाएं कराची में इस वक्त साई की बड़ी कमी है बहुत कम मुकामात पर आपको साया मिलता है गर्मी भी बहुत ज्यादा है बट थैंक गॉड इतनी ज्यादा नहीं है अभी फिलहाल अल्लाह का शुक्र है जब गर्मी कम हो तो खुदा का बड़ा शुक्र अदा किया करें कि वी आर हैविंग अ गुड डेज एंड साथ ही साथ खूब सारा पानी भी पिए ये भी बहुत जरूरी है और बात यह है कि वक्त कम है मुकाबला सख्त है मैसेजेस भी बहुत हैं रिक्वेस्ट भी बहुत हैं एंड आई हैव अ वेरी लेस टाइम तो चलें जी इस ट्रैक को शामिल कर लेते हैं इसकी रिक्वेस्ट हमसे की आसिम अजहर का भी न्यू सॉन्ग है जो करंटली सबका फेवरेट है सो एंजॉय देन आई विल बी राइट बैक

यस एवरीबॉडी, सो इस कम वक्त में भी हमने इस पसंद के ट्रैक को शामिल कर लिया है, बट द थिंग इज दैट के प्रोग्राम लॉन्च टाइम स्पेशल का वक्त हुआ जाता है खत्म। अब होगी इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात ऑन मंडे। तो अंटिल एंड अनलेस आप लोग रखें अपना भरपूर ख्याल, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, खूब सारा पानी पिए। उसी के साथ साथ बाइक राइडर्स को हम ये कहेंगे कि जी हाँ, अभी थोड़ी बहुत बारिश की पेशन को मौजूद है शहर कराची में, सो एहतियात करें। ये जो हल्की बारिश होती है ये बाइक राइडर्स के लिए बड़ी डेंजरस होती है, तो प्लीज एहतियात से बाइक चलाएं। और अगर कोई गैर जरूरी काम नहीं है तो प्लीज घर से बाहर ना निकलें। जरूरी काम तो जरूर निकलें, गैर जरूरी घर से बाहर ना निकलें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रखें अपना ख्याल, एंजॉय करें अपने वीकेंड को। फिर हम अपना वीकेंड आपने कैसा गुजारा मुझसे शेयर करिएगा। और मंडे को हम जा रहे हैं, मेहंदी हसन की आवाज आपको सुना रहे हैं, दिस ट्रैक इज ऑल्सो वेरी फेवरेट ऑफ माई लिसनर्स, सो एंजॉय करें इस ट्रैक को। मुलाकात होगी आपसे मंडे को। अल्लाह हाफिज एवरी वन, गॉड ब्लेस यू ऑल।

0: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: This program is brought to you by
2: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले maximum cooling और energy saving. No frost, no worries.
3: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: शेयर्ड बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: This program is brought to you by
2: Hire का नया No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost, No Worries

0: FM 100's time check. It's 5 p.m.
1: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL.
4: नाजरीन, ताजा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू.
5: बंद करो ना ढक्कन.
6: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
7: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
0: This program is brought to you by
8: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
6: And Sweepy Clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
1: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL. And
9: Cadillac, not so fun karte jao.
10: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
11: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
0: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
12: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: आज मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
1: हमने अपने आप को से तीन बार मौत देखा।
2: टाइम से मनु ऐसे ही के मैं हूँ, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
3: फिर उन्होंने साड़ी वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया।
0: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
4: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
0: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का कयाम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी। एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकदसा की ज्यारत को जाने वाले जायरीन भी कानूनी जराए इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें। ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैज कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है, और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल मीडिया या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है। ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराह कुनी या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधही और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है। अपने ऑनलाइन तहफ्फुज़ के पेश नज़र ये इकदाम जरूर उठाएं। जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें। अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट एप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें। अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स। डिजिटल तहफ्फुज का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है। बर वक्त और पेश के इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।
7: FM 24/7/365

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
2: Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
4: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
0: This program is brought to you by
5: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
0: and
6: Sweep B clean kare tezi se sakh daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf
0: and
1: HBL freedom account jahan khwab wahan HBL
0: and

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: तूफान है, हर जीत की पहचान है।
3: नशा न परेशानियां खत्म करता है, इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबता करें।
4: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
5: तोहीने रिसालत, नफरत आमेज तकरीर और मजहबी फिरका वारियत का फरोग आईन पाकिस्तान के मुताबिक एक इंतहाई संगीन जुर्म है। सोशल मीडिया जैसा कि यूट्यूब, ट्विटर या केबल FM पर इस नौयत का गैर कानूनी मवाद नजर में आए तो FIA, साइबर क्राइम विंग, PTA या FEMRA को फौरी इतला करें। जिम्मेदार शहरी बने, मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें। मुफाद आमा का ये पैगाम आपको FEMRA की जानिब से पेश किया जा रहा है।
6: facebook.com/FM247365 FM247365

0: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
1: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
2: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस. 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
3: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.

0: This program is brought to you by Afan.
1: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मी

0: FM 100's time check. It's 8 p.m. This program was brought to you by Tufaan Hai.
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
0: 100 FM.
2: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना.
0: This program is brought to you by
3: Hire ka naya no frost IoT refrigerator, twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365. FM 100. 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
4: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

0: It's 8:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
2: 100 FM
3: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
0: Like us on facebook.com/fm247365 This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے، ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. Traffic قوانین کی پابندی کیجیے.

0: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
1: 100 FM शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना।
2: This program is brought to you by
3: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले maximum cooling और energy saving. No frost, no worries.
4: Like us on facebook.com/FM247365 FM247365
5: Back to back. Only music, no RJ talk.
6: Only music, no RJ talk.
5: This is F.

0: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
3: 100 FM
4: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
6: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतालिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल है। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस कॉल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जैज सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342#। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
9: ये मुफाद-ए-आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
8: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखें, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की मंसूखी से मुतल्लिक किसी بھی مسئلے کے حل کے لیے ناترا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
3: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: FM 100's time check. It's 10 p.m. This program was brought to you by
1: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No Frost No Worries
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना
0: 100 FM
3: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना
4: FM247365
5: FM 100
6: 31 साल FM 100 आपकी आवाज अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान
5: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान

0: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
1: 100 FM शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना।
2: FM 24/7/365 FM 24/7/365

0: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कूट उसका नौजवान तबका है। पाकिस्तान की 61% आबादी 18 से 35 साल की उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है, जो एक मुनफरद आबादियाती सरमाया है। नौजवान हमारी मईशत की धड़कन और हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं। अहम उनके खिलाफ एक खामोश जंग जारी है और वो है मुनशियात का बेहतर इस्तेमाल। मुनशियात फरोश माफिया अच्छी तरह से जानती है कि कहां वार करें। हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां उनका हदफ हैं, जहां वो नौजवान जहनों को खतरनाक नशा आवर अशिया से गुमराह कर रहे हैं। यही वो मकाम है जहां इंसदाद मुनशियात फोर्स के एन एफ वाजे मकसद और मजबूत इरादे के साथ मैदान

0: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: facebook.com/fm247365 fm247365 baby I'm jealous.

0: कॉफी स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैयां।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, राहिबिया खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100.
2: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।